0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM. ऑलवेज हार्ट टच. नमस्कार,
1: 90.8 FM रेडिओ मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कबीर साहब की एक खूबी है कि वे कभी भी सत्य को छुपाकर या धीमे स्वर में नहीं कहते. वे भरे बाजार में खड़े होकर सबको सुनाकर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय की रेत हाथ से फिसल रही है. आज कबीर साहब की ओर से आप सबके लिए एक सीधा संदेश है सत्य को थामने का. कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहा भला होएगा नहीं तर भला न होए. कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई.

0: श्रोताओं, इस दोहे की पहली पंक्ति में कबीर एक साक्षी की तरह खड़े हैं। वे कहते हैं, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, यानी मैं तो निरंतर पुकार रहा हूँ और मेरी बात सबके कानों तक पहुँच भी रही है। लेकिन सिर्फ कानों से सुनना काफ़ी नहीं है, उनका सीधा संदेश है, राम कहाँ भला होएगा। यहाँ राम का अर्थ उस खट खट वासी चेतना से है, उस परम सत्य से है। यदि उस सत्य को याद रखोगे, उसका सुमिरन करोगे, तो ही जीवन का वास्तविक कल्याण होगा। लेकिन इसके बाद कबीर एक बड़ी चेतावनी देते हैं, नहीं तर भला न होए। यहाँ नहीं तर का सीधा मतलब है वरना या नहीं तो। कबीर साफ कह रहे हैं कि अगर तुमने इस बात को अनसुना कर दिया, अगर उस राम तत्व को नहीं पहचाना, तो फिर तुम्हारा भला किसी और तरीके से नहीं हो सकता। संसार की बाकी तमाम उपलब्धियां तुम्हें सुख तो दे सकती हैं, लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। अक्सर हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर उससे जीवन में उतारने के बजाय टाल देते हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सत्य के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों, कबीर की आवाज़ तो सबके दोस्तों कबीर की आवाज़ तो सब तक पहुंच रही हैं, आज आप तक भी पहुंची हैं। एक पल रुककर सोचिए, क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या वाकई अपने कल्याण का मार्ग चुन रहे हैं? याद रखिए, नहीं तर यानी अन्यथा पछतावा ही हाथ लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखान देश, आप ली मानसर।
2: बात तथागता दशशील संवर्धन के बाद तूने कथन किया कुछ अनिवार्य बातों का, लोभ, अज्ञान, प्राण हत्या, क्रोध, व्यभिचार और असत्य संभाषण। तूने कहा इनसे ढह जाती है बुनियाद व्यक्तिगत शुद्धि की, इसीलिए मनुष्य ने एक दूसरे के साथ रहना सदाचार से करना समावेश अपने जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग का दशशील संवर्धन के साथ। मनुष्य ने करना प्यार मनुष्य से। अगली कड़ी है मैत्री। मैत्री होती है व्यापक, मैत्री होती है अधिक समर्पक। प्यार से अधिक मित्रता में भाव होता है बंधुत्व का, वह नहीं होती मनुष्य तक सीमित। सद्गुणी मनुष्य को होती है आवश्यकता आचरण के लिए प्रज्ञा की, बुद्धि की और विवेक की। अज्ञान के अंधभाव से हुआ सत्कृत्य उचित है ऐसा नहीं, सद्गुणों का मार्ग उसमें उतरना चाहिए। यह प्रज्ञा की कसौटी और विवेक की अनुभूति के लिए है। बा तथागता, एक बार तुझे पूछा गया तेरे बाद धम्म का वारिस कौन? तुमने कहा व्यक्ति निष्ठा धम्म के लिए अवरोध है, तुम धम्म के दायित्व बनो। धम्म यानी नीति, धम्म यानी विचार, धम्म यानी शील संवर्धन, धम्म यानी जीवन जीने का उत्कर्ष, धम्म का अनुसरण करना। तुमने संदेश दिया और बहुत ही स्पष्टता से कहा मैं तुम्हारा मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। बहुत से धर्म प्रवर्तकों ने स्वयं को साक्षात्कारी पुरुष घोषित कर लिया, कहते थे मैं हूँ निर्माता तुम्हारा, करो मेरी पूजा और कर लो प्राप्त मुक्ति आत्मा की। किसी ने कहा मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ। किसी ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तो किसी ने कहा मैं ईश्वर का प्रेषित दूत हूँ। परंतु तूने नकार दिया ईश्वरवाद को, कल्पना और कर्मकांड को, किसी भी असत्य अविवेकी विधान को। तूने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं, किसी के भी हाथ में मुक्ति दिलाने का अधिकार नहीं होता, खुद ही करना होता है खुद का उद्धार। ज्ञान से, शील संवर्धन से, आचरण से प्रज्ञावंत बनकर अत्तदीप भव मार्ग से सफर कर। तूने कहा मैं तुम्हारा मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। निब्बान की ओर जाने वाला मार्ग मैं दिखाऊंगा तुम्हें, परंतु निब्बान की ओर जाने का संकल्प और प्रयत्न खुद ही करना पड़ता है। साधना, आनंद और तटस्थता नहीं मिल पाती किसी को भी किसी की कृपा से, उसके लिए स्वयं चलना पड़ता है। बुद्धिवादी शील मार्ग से, संकल्प से। बा तथागता, तूने कहा निब्बाण यानी परम सुख। निब्बाण के जैसा परम सुख प्राप्त नहीं होता किसी अन्य मार्ग से। तेरे सारे सिद्धांतों में निब्बाण, यह सिद्धांत केंद्रीय स्थान पर है। यह निब्बाण क्या है? तुझसे पहले कुछ लोगों ने निब्बाण को ऐसा संबोधित करने का प्रयास किया कि निब्बाण यानी मुक्ति है। चार प्रकार की मुक्ति मानी जाती थी पहले। प्रथम थी खाओ पियो मजा करो, इसका स्वरूप जड़ यानी अचेतन। दूसरी यानी यौगिक। तीसरी को कहा जाता था ब्राह्मणी और चौथी औपनिषदिक। था साम्य ब्राह्मणी और औपनिषदिक निब्बाण कल्पना में। इन कल्पनाओं ने आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। परंतु हे तथागता, तूने इस सिद्धांत को नकारा और उस विचार का खंडन कर उसे निरर्थक साबित किया। जड़ कल्पना का निब्बाण यानी इंद्रिय को संतुष्ट करना है। इंद्रियों का दमन होने के कारण इनसे अंश मात्र भी अध्यात्म नहीं। इस कारण नहीं हो सकता मनुष्य का कल्याण।
3: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: नमस्कार, ओम शांती। पसायदान, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी माउली, उनका पसायदान, उनमें नौ चरण है, नौ श्लोक है, नौ ओवी है, और नव ओवी का चिंतन हम कर रहे हैं। जब हम ये शेयर करते हैं तब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मेरे दोस्तों का, कि बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि नव ओवी है, नव चरण है, और उसके ऊपर अगर हमें पार्ट बनाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा नौ और इंट्रोडक्शन दो तीन, ऐसे 12-13 पार्ट हो जाएंगे तो सफिशिएंट है। आपको क्या लगता है? ये जो उद्देश्य था पसायदान आपके साथ शेयर करने का, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि शब्दार्थ आपके साथ शेयर करें, शब्दार्थ तो है ही, लेकिन ये मावली का शब्द जो है, हर एक शब्द, एक एक शब्द जो है, उसका प्रयोग उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है उसमें गहनता है। और अगर हम गहनता जान लेने की कोशिश करेंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं जड़ तक जा पा रहा हूं, लेकिन आप जा पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें से क्या ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आपके विचारों को कुछ दिशा देनी है। आप मेरे से भी काफी ज्ञानी हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कुछ अगर अच्छी दिशा मिले तो और भी कुछ रत्न निकल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आज हमारा 10वां एपिसोड है, 10वां पार्ट है, और हमारे चरण वो भी जो है तीसरी भी अभी पूरी नहीं हुई। दुरितान से तिमि रजावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। हमने दुरित, तिमिर और विश्व उसके ऊपर चिंतन किया, फिर विश्व के बाद स्वधर्म, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, स्वधर्म के ऊपर भी हमने चिंतन किया। विश्व के ऊपर आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था तब ऐसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मराठी में बहुत बार हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम मराठी में अगर किसी के पास दरिद्रता है तो हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, 18 विश्वे दारिद्र्य। आज मेरे मन में प्रश्न आया कि ये 18 विश्वे दारिद्र्य 18 विश्व कहां से आए, उसके पीछे का अर्थ क्या है। कोई भी भाषा है उसके जो शब्द प्रयोग वाक प्रचार बोलते हैं सेइंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य छिपा हुआ रहता है और ये सत्य हमें उजागर करना है। और ये पसायदान के आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य ये है, हम ये 18 विश्व के ऊपर अभी ये विषय नहीं है हमारा चिंतन का, ऐसे ही मेरे मन में प्रश्न आया तो आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे हर एक शब्द का प्रयोग जो माउली ने किया है, माउली तो योगी राज है, ऊपर से बहुत शब्द जो है आसान दिखेंगे, उसका अर्थ तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट में एक ही पार्ट में पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे माँ का प्यार होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ये माउली का जो पसायदान है 9 ओवी 9 चरण, हर एक शब्द मुझे इतना आकर्षित करता है, इतना अच्छा लगता है कि उसके ऊपर कितनी भी बात करे, कितना भी चिंतन करे वो भी कम है। तो यह ऐसा विश्व के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया, अभी हम चिंतन कर रहे हैं सूर्य के ऊपर। विश्व स्वधर्मे, विश्व हो गया, स्वधर्म हो गया, सूर्य पाहो। अभी ये विश्व जो है वो सूर्य को क्या देखेगा। स्वधर्म तो ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्वधर्म मीन्स अपना धर्म, लेकिन ये स्वधर्म क्या है इसके ऊपर भी चिंतन किया, तो ये विश्व सूर्य को क्या देखेगा। सूरज को तो हम रोज देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को सूरज डूब जाता है, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, लेकिन वो ना कभी उगता है ना कभी डूबता है। हम सूरज के तरफ मुंह मोड़ लेते हैं तो शाम हो जाती है, और मुंह करते हैं तो दिन आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सूरज सूरज जो कहते हैं, तो माउली को अभिप्रेत क्या है, ये सूरज है सन। और मजे की बात देखिए, सन जो है, सन इज वन। आप अमेरिका में जाओ तो सन है, इंग्लैंड में जाओ तो सन है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ सन है, भारत में रहो सन है, सूरज है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक ही। कार्य क्या करता है, ऊर्जा देता है, 24/7 ऊर्जा देता है, भले आपको मिले या ना मिले वो तो बात अलग है, लेकिन वो तो देते रहता है। और ऐसा सूरज जो है उसे हमने भगवान का रूप दिया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं सूर्य नमस्कार, महाराष्ट्र में है, बहुत जगह है, भारत में है, सूर्य नमस्कार एक अष्टांग योग है, और बचपन में मेरे पिताजी मुझे इंस्पायर करते थे, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, और मैं 108 नमस्कार डालता था, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार होने के बाद वो तीर्थ लेते थे, और ये तीर्थ में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरेत धारयाम्यहम। सूर्य पादोदकम, सूरज के पावत जो है, सूरज का चरणों का तीर्थ जो है, वो अगर मैं मेरे जठर में, मेरे पेट में धारण करता हूं, तो मेरा अकाल मृत्यु हरणम, मेरा अकाल मृत्यु निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी व्याधि है, सर्व व्याधि, उनका विनाश हो जाएगा। कब? जब मैं सूरज के पादुका चरणों का तीर्थ मेरे जठर में धारण करता हूं। अब ये सूरज का पाव कहाँ है, सूरज के चरण कहाँ है, उनका तीर्थ क्या है, और उसके पीछे की भावना क्या है, इसके ऊपर भी अलग से चिंतन होना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये सूरज जो है, क्या यही सूरज है ज्ञानेश्वर को अभिप्रेत? अगर यही सूरज है तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो ये मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है सूरज को देखता ही है। ज्ञानेश्वर जी के पहले भी देखता था, बाद में भी देखता है, अभी 700 साल पूरे हो गए, आज भी हम सूरज को देखते हैं, सारा विश्व देखता है। फिर विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, ऐसे परमात्मा के पास रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर हम जरूर चिंतन करेंगे, सूरज क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम
5: शांति।
6: नमस्कार श्रोते हो, आपण ऐकत आहात रेडिओ वत्सगुणचं प्रसारण। तर श्रोते हो, आता वेळ झाली आहे कृषी कार्यक्रमाची, तर प्रसारित करत आहोत शेतकरी बांधवांसाठीचा कार्यक्रम किसानों की बात रेडिओ वत्सगुण के साथ।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, खत्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे ने, बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है। यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। You know, like that is what I'm saying. Ki it like I don't want to live. I don't want to do anything. You know, and उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीजें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे fundamental बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक fundamental realization है जो हमारा सारा perspective change कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा, मेरा कहने वाला वो मैं कौन। तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन, वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते, सोल कहते, स्पिरिट कहते, मैं इटर्नल हूँ. तो डेथ किसकी होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? वॉट इज डेथ? इज वेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिक्युलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं? बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते हैं कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, for settling a particular account, उसके बाद the soul cannot be in my contact anymore, क्योंकि उसका वो account finish हो गया and it has to go somewhere else, जहाँ उनका एक
0: नया account है.
1: वो soul अपनी journey पे है. You know, it's like एक train में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी journey पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही station से चढ़ें और सब लोग एक ही station पे उतरे. हर एक की journey अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे साथ.
0: सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ.
1: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना. चलो अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ, इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. शुरू में तो remembrance है.
0: हाँ.
1: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: It's like कभी रोता है,
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता. तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 4, 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करते, हमें लगता है वो हमें देखकर डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकॉग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है. यहाँ अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा. अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा. यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं. लॉ ऑफ एनर्जी
0: किस बॉडी में था? किसी और कॉस्ट्यूम में था.
1: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना. एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है. दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप. अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाली है. कहाँ ट्रैवल करेगी?
0: उसी पे,
1: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते. लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ, मैं दर्द भेजते जा रहे हूँ, भेजते सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा. इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन. अपने लिए नहीं, उनके लिए सही,
0: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
1: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता, वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो, इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन.
0: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया जो भी है, उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रही हैं.
1: ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ कोर्स. सी, इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे,
0: ओ, तो देन अननोइंगली
1: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
0: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा.
1: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो. अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर,
0: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही है.
1: दैट्स बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी. यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट. इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल. इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे, अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ हाँ,
0: सब ठीक है,
1: सब ठीक है. यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो, हम बताते नहीं. व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहां सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहां पर सेट हो जाए. हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते
0: हैं? हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश. I don't want to say that, but
1: because we're thinking only about ourselves, yes, no, yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
0: Haan.
1: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं. हमने कहा वो तो चले गए.
0: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है.
1: लेकिन
0: वो कहीं तो है
1: ना. सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं है,
0: लेकिन एक्सेप्ट इट, यू नो, लाइक ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कन्फ्यूजन्स और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है.
1: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना. विनाश नहीं हो सकता ना. एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर. व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है.
0: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन हैं कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं. उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
1: से कनेक्ट करने की भी कोशिश
0: करते हैं. इज इट राइट?
1: इट इज अगेन, सी, राइट एंड रॉन्ग अगेन. जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम. वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है. प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते. एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
0: सेटलमेंट नहीं होगा,
1: नहीं होगा ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापिस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चले गए हैं, दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
0: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स
1: नाउ, सी नाउ, इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2-3-4 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ है, एक नहीं है, लेकिन जो है
0: इरिटेशन होने लग जाती है. I just, because मुझे अपने आप से हो रही होती है.
1: मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को। हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग, दिस इज हाउ द पास्ट
0: एक्चुअली एज इंपॉर्टेंट एज दैट चाइल्ड,
1: एज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, इक्वली इंपॉर्टेंट। वाज इट दैट दैट पर्सन वाज इंपॉर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट इंपॉर्टेंट, बट माय फोकस गोज ऑल टुवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर, एंड इन द प्रोसेस आई निग्लेक्ट एवरीवन who is there. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। जो बच्चा है आज वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं। तो उस बच्चे को जो उनके साथ है उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की? घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है? दर्द में। We have to stop and ask ourselves, till when will we let this past influence my present? I cannot do anything about it except for accepting the situation.
0: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, ab aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayar hain, to kya kare?
1: Hame ye pata hai ki याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
0: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
1: वो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन। तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
0: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं
1: उनको जब भी याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर, एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस। हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए, लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी। वो आत्मा को शांति कब मिलेगी?
0: जब
1: हम शांत रहेंगे। हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, कुछ भी करने से शांत। अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा?
0: मेरा
1: दर्द पहुंचेगा। तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा? हमें शांत रहना पड़ेगा। That's the only way, and that's why we have to accept and let go of the past. And जब भी याद आए, vibrations of love, peace and power. It's very important.
0: And actually हम जितना peace, power और इस love की vibrations भेजेंगे, वो हमसे ही होकर गुजरेंगे। तो this actually we can try it out.
1: Actually situation को accept करना पड़ता है। दर्द क्यों create करते हैं? हम accept नहीं करते। मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? मेरे साथ, मुझे नहीं। हमें accept करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है, और जितना हम उनको अच्छी vibrations भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे। एंड एज अ फैमिली मेंबर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल।
0: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट। कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है। सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें।
1: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, माय पीस is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment, and as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं, और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध, और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं, आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.

0: श्रोताओं, इस दोहे की पहली पंक्ति में कबीर एक साक्षी की तरह खड़े हैं। वे कहते हैं, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, यानी मैं तो निरंतर पुकार रहा हूँ और मेरी बात सबके कानों तक पहुँच भी रही है। लेकिन सिर्फ कानों से सुनना काफ़ी नहीं है, उनका सीधा संदेश है, राम कहाँ भला होएगा। यहाँ राम का अर्थ उस खट खट वासी चेतना से है, उस परम सत्य से है। यदि उस सत्य को याद रखोगे, उसका सुमिरन करोगे, तो ही जीवन का वास्तविक कल्याण होगा। लेकिन इसके बाद कबीर एक बड़ी चेतावनी देते हैं, नहीं तर भला ना होए। यहाँ नहीं तर का सीधा मतलब है वरना या नहीं तो। कबीर साफ कह रहे हैं कि अगर तुमने इस बात को अनसुना कर दिया, अगर उस राम तत्व को नहीं पहचाना, तो फिर तुम्हारा भला किसी और तरीके से नहीं हो सकता। संसार की बाकी तमाम उपलब्धियां तुम्हें सुख तो दे सकती हैं, लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। लेकिन कल्याण सिर्फ सत्य के मार्ग पर ही संभव है। अक्सर हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर उससे जीवन में उतारने के बजाय टाल देते हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सत्य के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों, कबीर की आवाज़ तो सबके दोस्तों कबीर की आवाज़ तो सब तक पहुंच रही हैं, आज आप तक भी पहुंची हैं। एक पल रुककर सोचिए, क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या वाकई अपने कल्याण का मार्ग चुन रहे हैं? याद रखिए, नहीं तर यानी अन्यथा पछतावा ही हाथ लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
2: बात तथागता दशशील संवर्धन के बाद तूने कथन किया कुछ अनिवार्य बातों का, लोभ, अज्ञान, प्राण हत्या, क्रोध, व्यभिचार और असत्य संभाषण। तूने कहा इनसे ढह जाती है बुनियाद व्यक्तिगत शुद्धि की, इसीलिए मनुष्य ने एक दूसरे के साथ रहना सदाचार से करना समावेश अपने जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग का दशशील संवर्धन के साथ। मनुष्य ने करना प्यार मनुष्य से। अगली कड़ी है मैत्री। मैत्री होती है व्यापक, मैत्री होती है अधिक समर्पक। प्यार से अधिक मित्रता में भाव होता है बंधुत्व का, वह नहीं होती मनुष्य तक सीमित। सद्गुणी मनुष्य को होती है आवश्यकता आचरण के लिए प्रज्ञा की, बुद्धि की और विवेक की। अज्ञान के अंधभाव से हुआ सत्कृत्य उचित है ऐसा नहीं, सद्गुणों का मार्ग उसमें उतरना चाहिए। यह प्रज्ञा की कसौटी और विवेक की अनुभूति के लिए है। बा तथागता, एक बार तुझे पूछा गया तेरे बाद धम्म का वारिस कौन? तुमने कहा व्यक्ति निष्ठा धम्म के लिए अवरोध है, तुम धम्म के दायित्व बनो। धम्म यानी नीति, धम्म यानी विचार, धम्म यानी शील संवर्धन, धम्म यानी जीवन जीने का उत्कर्ष, धम्म का अनुसरण करना। तुमने संदेश दिया और बहुत ही स्पष्टता से कहा मैं तुम्हारा मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। बहुत से धर्म प्रवर्तकों ने स्वयं को साक्षात्कारी पुरुष घोषित कर लिया, कहते थे मैं हूँ निर्माता तुम्हारा, करो मेरी पूजा और कर लो प्राप्त मुक्ति आत्मा की। किसी ने कहा मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ। किसी ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तो किसी ने कहा मैं ईश्वर का प्रेषित दूत हूँ। परंतु तूने नकार दिया ईश्वरवाद को, कल्पना और कर्मकांड को, किसी भी असत्य अविवेकी विधान को। तूने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं, किसी के भी हाथ में मुक्ति दिलाने का अधिकार नहीं होता, खुद ही करना होता है खुद का उद्धार। ज्ञान से, शील संवर्धन से, आचरण से प्रज्ञावंत बनकर अत्यदीप भव मार्ग से सफर कर। तूने कहा मैं तुम्हारा मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। निब्बाण की ओर जाने वाला मार्ग मैं दिखाऊंगा तुम्हें, परंतु निब्बाण की ओर जाने का संकल्प और प्रयत्न खुद ही करना पड़ता है। साधना, आनंद और तटस्थता नहीं मिल पाती किसी को भी किसी की कृपा से, उसके लिए स्वयं चलना पड़ता है। बुद्धिवादी शील मार्ग से, संकल्प से। बा तथागता, तूने कहा निब्बाण यानी परम सुख। निब्बाण के जैसा परम सुख प्राप्त नहीं होता किसी अन्य मार्ग से। तेरे सारे सिद्धांतों में निब्बाण, यह सिद्धांत केंद्रीय स्थान पर है। यह निब्बाण क्या है? तुझसे पहले कुछ लोगों ने निब्बाण को ऐसा संबोधित करने का प्रयास किया कि निब्बाण यानी मुक्ति है। चार प्रकार की मुक्ति मानी जाती थी पहले। प्रथम थी खाओ पियो मजा करो, इसका स्वरूप जड़ यानी अचेतन। दूसरी यानी यौगिक। तीसरी को कहा जाता था ब्राह्मणी और चौथी औपनिषदिक। था साम्य ब्राह्मणी और औपनिषदिक निब्बाण कल्पना में। इन कल्पनाओं ने आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। परंतु हे तथागता, तूने इस सिद्धांत को नकारा और उस विचार का खंडन कर उसे निरर्थक साबित किया। जड़ कल्पना का निब्बाण यानी इंद्रिय को संतुष्ट करना है। इंद्रियों का दमन होने के कारण इनसे अंश मात्र भी अध्यात्म नहीं, इस कारण नहीं हो सकता मनुष्य का कल्याण।
3: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: नमस्कार, ओम शांती। पसायदान, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी माउली, उनका पसायदान, उनमें नौ चरण है, नौ श्लोक है, नौ ओवी है, और नौ ओवी का चिंतन हम कर रहे हैं। जब हम ये शेयर करते हैं तब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मेरे दोस्तों का, कि बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि नौ ओवी है, नौ चरण है, और उसके ऊपर अगर हमें पार्ट बनाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नौ और इंट्रोडक्शन दो तीन, ऐसे 12-13 पार्ट हो जाएंगे तो सफिशिएंट है। आपको क्या लगता है? ये जो उद्देश्य था पसायदान आपके साथ शेयर करने का, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि शब्दार्थ आपके साथ शेयर करें, शब्दार्थ तो है ही, लेकिन ये माउली का शब्द जो है, हर एक शब्द, एक एक शब्द जो है, उसका प्रयोग उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है उसमें गहनता है। और अगर हम गहनता जान लेने की कोशिश करेंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं जड़ तक जा पा रहा हूं, लेकिन आप जा पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें से क्या ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपके विचारों को कुछ दिशा देनी है। आप मेरे से भी काफी ज्ञानी हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कुछ अगर अच्छी दिशा मिले तो और भी कुछ रत्न निकल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आज हमारा 10वां एपिसोड है, 10वां पार्ट है, और हमारे चरण वो भी जो है तीसरी भी अभी पूरी नहीं हुई। दुरितान से तिमि रजावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। हमने दुरित, तिमिर और विश्व उसके ऊपर चिंतन किया, फिर विश्व के बाद स्वधर्म, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्म के ऊपर भी हमने चिंतन किया। विश्व के ऊपर आज जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था तब ऐसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि मराठी में बहुत बार हम कुछ शब्द प्रयोग करते हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम मराठी में अगर किसी के पास दरिद्रता है तो हम ये शब्द प्रयोग करते हैं 18 विश्वे दारिद्र्य। आज मेरे मन में प्रश्न आया कि ये 18 विश्वे दारिद्र्य 18 विश्व कहां से आए, उसके पीछे का अर्थ क्या है। कोई भी भाषा है उसके जो शब्द प्रयोग वाक प्रचार बोलते हैं सेइंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य छिपा हुआ रहता है और ये सत्य हमें उजागर करना है। और ये पसायदान के आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य ये है, हम ये 18 विश्व के ऊपर अभी ये विषय नहीं है हमारा चिंतन का, ऐसे ही मेरे मन में प्रश्न आया तो आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे हर एक शब्द का प्रयोग जो माउली ने किया है, माउली तो योगी राज है, ऊपर से बहुत शब्द जो है आसान दिखेंगे, उसका अर्थ तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट में एक ही पार्ट में पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे माँ का प्यार होता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे ये माउली का जो पसायदान है 9 ओवी 9 चरण, हर एक शब्द मुझे इतना आकर्षित करता है, इतना अच्छा लगता है कि इसके ऊपर कितनी भी बात करे, कितना भी चिंतन करे वो भी कम है। तो यह ऐसा विश्व के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया, अभी हम चिंतन कर रहे हैं सूर्य के ऊपर। विश्व स्वधर्मे, विश्व हो गया, स्वधर्म हो गया, सूर्य पाहो। अभी ये विश्व जो है वो सूर्य को क्या देखेगा। स्वधर्म तो ठीक है, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्वधर्म मीन्स अपना धर्म, लेकिन ये स्वधर्म क्या है इसके ऊपर भी चिंतन किया, तो ये विश्व सूर्य को क्या देखेगा। सूरज को तो हम रोज देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को सूरज डूब जाता है, सूरज उगता है और सूरज डूबता है, लेकिन वो ना कभी उगता है ना कभी डूबता है। हम सूरज के तरफ मुंह मोड़ लेते हैं तो शाम हो जाती है, और मुंह करते हैं तो दिन आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सूरज सूरज जो कहते हैं, तो माउली को अभिप्रेत क्या है, ये सूरज है सन। और मजे की बात देखिए, सन जो है, सन इज वन। आप अमेरिका में जाओ तो सन है, इंग्लैंड में जाओ तो सन है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ सन है, भारत में रहो सन है, सूरज है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक ही। कार्य क्या करता है, ऊर्जा देता है, 24/7 ऊर्जा देता है, भले आपको मिले या ना मिले वो तो बात अलग है, लेकिन वो तो देते रहता है। और ऐसा सूरज जो है उसे हमने भगवान का रूप दिया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं सूर्य नमस्कार, महाराष्ट्र में है, बहुत जगह है, भारत में है, सूर्य नमस्कार एक अष्टांग योग है, और बचपन में मेरे पिताजी मुझे इंस्पायर करते थे, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, और मैं 108 नमस्कार डालता था, सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार होने के बाद वो तीर्थ लेते थे और ये तीर्थ में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरेत धारयाम्यहम। सूर्य पादोदकम, सूरज के पावत जो है, सूरज का चरणों का तीर्थ जो है, वो अगर मैं मेरे जठर में मेरे पेट में धारण करता हूं तो मेरा अकाल मृत्यु हरणम, मेरा अकाल मृत्यु निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी व्याधि है सर्व व्याधि उनका विनाश हो जाएगा। कब? जब मैं सूरज के पादुका चरणों का तीर्थ मेरे जठर में धारण करता हूं। अब ये सूरज का पाव कहाँ है, सूरज के चरण कहाँ है, उनका तीर्थ क्या है और उसके पीछे की भावना क्या है, इसके ऊपर भी अलग से चिंतन होना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये सूरज जो है, क्या यही सूरज है ज्ञानेश्वर को अभिप्रेत? अगर यही सूरज है तो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो ये मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जो है सूरज को देखता ही है। ज्ञानेश्वर जी के पहले भी देखता था, बाद में भी देखता है, अभी 700 साल पूरे हो गए, आज भी हम सूरज को देखते हैं, सारा विश्व देखता है। फिर विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, ऐसे परमात्मा के पास रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर हम जरूर चिंतन करेंगे, सूरज क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
5: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
6: नमस्कार श्रोते हो, आपण ऐकत आहात रेडिओ वत्सगुरूंचं प्रसारण। तर श्रोते हो, आता वेळ झाली आहे कृषी कार्यक्रमाची, तर प्रसारित करत आहोत शेतकरी बांधवांसाठीचा कार्यक्रम किसानों की बात रेडिओ वत्सगुरूंके साथ।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं और फिर जहाँ हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज जीवन में, वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है, यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। You know, like that is what I'm saying. Ki it like I don't want to live. I don't want to do anything. You know, and उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीजें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे fundamental बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक fundamental realization है जो हमारा सारा perspective change कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला वो मैं कौन, तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस, तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन, वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते, सोल कहते, स्पिरिट कहते, मैं इटर्नल हूँ. तो डेथ किसकी होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज डेथ? इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिकुलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं? बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते हैं कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी की लेन देन है. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, for settling a particular account, उसके बाद the soul cannot be in my contact anymore, क्योंकि उसका वो account finish हो गया and it has to go somewhere else, जहाँ उनका एक
0: नया account
1: है. वो soul अपनी journey पे है. You know, it's like एक train में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी journey पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही station से चढ़ें और सब लोग एक ही station पे उतरे. हर एक की journey अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे
0: साथ. सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ.
1: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली. अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ, इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. शुरू में तो remembrance है.
0: हाँ.
1: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: कभी वो हंसता है, कभी रोता है.
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता. तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करते, हमें लगता है वो हमें देखकर डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकॉग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. अब उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है. यहाँ अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा. अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा. यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं. लॉ ऑफ एनर्जी
0: किस बॉडी में था? यू नो, किसी और कॉस्ट्यूम में था.
1: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना. एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है. दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप. तो अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाली है. कहाँ ट्रैवल करेगी?
0: उसी पे,
1: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते. लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ, मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा. इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन. अपने लिए नहीं, उनके लिए सही,
0: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
1: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता, वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो, इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन.
0: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया, जो भी है, उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रही हैं.
1: ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ कोर्स. सी, इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे,
0: तो देन अननोइंगली
1: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
0: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहाँ पे भी होगा.
1: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो. अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर एनर्जी इज बींग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर,
0: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही
1: है. दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी. यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट. इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल. इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे, अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ,
0: सब ठीक है.
1: यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो, हम बताते नहीं. व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहाँ सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहाँ पर सेट हो जाए. हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते
0: हैं? हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश. I don't want to say that, but
1: because we're thinking only about ourselves, yes, no, yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
0: Haan.
1: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं. हमने कहा वो तो चले गए.
0: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना. ये बड़ा दुख है.
1: लेकिन
0: वो कहीं तो है.
1: है ना? सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं है,
0: लेकिन एक्सेप्ट इट, यू नो, लाइक ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कंफ्यूजन्स और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, या इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है.
1: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना. विनाश नहीं हो सकता ना. एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर. व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है.
0: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कंफ्यूजन्स हैं कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं. उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
1: कनेक्ट करने की भी कोशिश
0: करते हैं. इज इट राइट?
1: इट इज अगेन, सी, राइट एंड रॉन्ग अगेन. जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना, मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम. वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है. प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते. एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
0: सेटलमेंट नहीं होगा,
1: नहीं होगा ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चली गई है दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते? क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
0: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स.
1: नाउ सी, नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते? रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2-3-4 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है, we cannot do anything. लेकिन जो है
0: इरिटेशन होने लग जाती है. आई जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप से हो रही होती है,
1: मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग ही. दिस इज हाउ द पास्ट
0: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट इज दैट चाइल्ड
1: एज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट द रेस्ट वर नॉट इम्पोर्टेंट बट माई फोकस गोज ऑल टूवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर. And in the process, I neglect everyone who is there. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि husband wife के बीच का relationship वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. जो बच्चा है आज वो neglected feel कर रहा है क्योंकि parents क्या है पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं. तो उस बच्चे को जो उनके साथ है उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की. घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया दर्द में. We have to stop and ask ourselves, till when will we let this past influence my present? I cannot do anything about it except for accepting the situation.
0: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ये है, अब आप अगर अपने आप पर काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या करें.
1: हमें ये पता है कि याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता. लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है, जैसे याद आती है तो याद इज फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है.
0: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
1: एक्चुअली वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट.
0: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं
1: उनको जब भी याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर. And I send you vibrations of love, vibrations. हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी. वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
0: जब
1: हम शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स. कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा,
0: मेरा
1: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: एंड एक्चुअली हम जितना पीस, पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट.
1: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ मुझे नहीं. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है. और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल.
0: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
1: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. आई एम अ पीसफुल बीइंग. माई पीस इज माई क्रिएशन. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज हु आर विद मी एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज हु हैव लेफ्ट. आई कैन क्रिएट इट राइट हियर इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एज आई क्रिएट इट, इट फ्लोज आउट फ्रॉम मी. शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध. और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. I send out vibrations. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं. आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.